इंडस्ट्री की दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सहीरा जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, इस सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हैं। हुने कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलते ने फ्रेश वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इक्को थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगु शॉपिंग का मजा असली पंजाब भर का। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cash and carry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लई तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच ते डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स ते स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो कि तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन।

0: Radio, food for your body, mind, and soul. I aapka swagat hai. Dhanse saath mein aur jiye atma parmatma ek duniya aur bahar ki duniya ke saath. Aapko apne aap ki check karwani hai eye exam, eye glasses, contact lenses, sunglasses, safety glasses. To visit kijiye Alpha Optical, Jacuzzi and Williams Parkway mein maujood Golden Gate Plaza mein, Brampton mein. Alpha Optical, any age, any stage. Ji haan, unki specials dekhne ke liye alphaoptical.ca pe jaiye. Aapko wo check karwane ke liye appointment ke liye 905-450-5555 पर कॉल कीजिए 905-456-0733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस
1: लो जी कमाई फिर अपना टेस्ट की गल करन लगे हैं दिल कर रहे हैं ताही का सिफ्ट करन लगे हैं जरा सुन के सारे आओ

0: पेट कंठ पुने पई गुन गाए दुर्द गया हर नाम ते आए रहा सबनी थाई रव्या आद जुगाद जाता मन पता गुर प्रसाद न होए संता गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब खाई मूठे सब सुख पाए सतगुर टूटे
1: लगवानी है। अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में आपको कार की रिपेयर करवानी है विंटराइज करवाना है नए टायर लगवानी है या फिर आप अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहाँ पे कहाँ पे योगीज ऑटो सेंटर तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-4 905-547-6464 योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवानी है ऑयल चेंज करवाना है तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट
0: चरण कमल प्रभु गिरदा ध्याए रोग गए सगले सुख पाए।

पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहा। ताप पाप संताप बिना से, हर सिमरत किल बिक सबना से, अनहद करहो मिल सुंदर ना।

क्या दिया रहा वन त्रेन त्रिपहन हरिया हो सगले जिया साधारिया मन छे नानक पल पाए पूरन इच पुजारिया बिलावल अल्लाह पंजवा रोग गया प्रभ आप गवाया नीत पई सुख सहज कर आया रहा राज राज भोजन खावा मेरे भाई अमृत नाम रिद माहे ते आई

संतन रस भोग रहा। सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन आरोग, गुणगाम होनेत राम के ए अवध जोग। आए बसों का देश में

घर जा पिए अंतर लाई किलबित उतरह सुध होए साधु शरणाई सुनत जपत हर नाम जस काकी दूर बनाई महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई बिलावल भला पंजो हर हर हर आराध्य होइए आरोग रामचंद्र की लस्त का जिन मारिया रोग रहा गुरपुरा हर जापिए नित की चै भोग साथ संगत क्या

प्रसाद अब रूपा सत्य आ गया दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन भया।

मैं जात रहा कर कृपा हसत रब्बी ने जिक्र उधार नवखंड पर काम दुख बिन से सुख अनंत पर बैसा।

कीटनाशन गणेश स्तोत्रम। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः काम।

तो भास्कर जंघे में पातु मातालो गुल्फो पातु दिशां पति पादौ पातु दिनमणि पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्य कवचं पुण्यम् अभेद्य वच्छ सन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो उच्यते नात्र संशयः।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम या अली मदद। और आपके लिए ये वीकेंड जो है, अभी लॉन्ग वीकेंड तो है नहीं है, लेकिन ये है कि इस वीकेंड अभी बहुत सारी अच्छे अच्छे इवेंट्स हो रही हैं। नियाग्रा फॉल में 3 दिन का म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है, तो सभी लोग आए हुए हैं, बड़ी मजेदार रौनक छाई हुई है। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो, और साथ में आपको और भी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया गैजेट्स किचन के लिए चाहिए, तो आपको जाना होगा, जी हाँ, तो आप को जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए प्रिंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। आपको लेटेस्ट किचन की गैजेट चाहिए या फिर आपने बढ़िया टीवी लेना है, लेटेस्ट मॉडल का टीवी आपको चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की आप स्पेशल फेस्टिव सीजन आपके लिए अब शुरू हो चुकी है, तो फेस्टिव सीजन आपके लिए गणेश उत्सव से हमेशा शुरू होता है। तो आप अगर आपने बढ़िया बढ़िया सामान लेना है, अभी से शुरू करना है, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए और वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया चॉइस आपको मिलेगी, बढ़िया प्राइस मिलेगी, बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है, तो आप बहुत बढ़िया, आपको आप नसीब फ्रेंड को कॉल कीजिएगा। नसीब फ्रेंड आपके लिए बहुत बढ़िया, उनका सर्विस है आपके लिए। 519-546-1260 पर आप उनको कॉल कर सकते हो। 519-546-1260 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं। अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है, तो एच के मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं कनाडा भर में मूव होने के लिए। और साथ ही अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने कोई सामान किसी तरह का भी मूव करना है, उनके बहुत सारी टीम्स हैं, तो आपके सामान को हफाजत से पहुंचाते हैं। तो आप उनका नंबर लिख लीजिए और अपना टैक्स बुक कर लीजिए। आप 416-524-7004-416-524 आप उनको कॉल कर सकते हैं। 416-524-7604 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं, एच के मूवर्स को। और मूविंग कोई आसान चीज नहीं होती है, बड़ी मुश्किल होती है। तो इलेक्शंस अक्टूबर 26 को आने वाले हैं, तो आपके लिए इलेक्शन के टाइम पे आपको आपको पता होना चाहिए कि आपके इलाके के उम्मीदवार कौन कौन से हैं। जैसे कि थौरल्ड में साद महमूद आगे आए हैं, तो उनका जो है कि कम्युनिटी की अपनी की बहुत नियाग्रा और आसपास के इलाके में उनका जो बड़ा अच्छा नाम है, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी की बहुत सारी मुश्किलों को हल करते हैं और सभी का उनके जो भी उनको किसी का पता चले, किसी की मदद चाहिए, तो सभी जगह वो अपनी कम्युनिटी में आगे आते हैं मदद करने के लिए लोगों की। तो आप को वोटिंग की अभी अक्टूबर 26 को है, तो आप अपने थौरल्ड में अगर आप रहते हैं, तो आप साद महमूद आपकी सेवा में हाजिर हैं। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो, तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तो लैके 1 लाख, ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49%
ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਾਰ ਟਾਇਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3840। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3840। BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। ਜੀ ਹਾਂ, BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ 9365-384-3840। ਰੌਕਲਿਫ, BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ। तो आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, क्योंकि अब आपके लिए गीत तो सुनाना बनता ही है ना, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया बढ़िया गीत आपको सुनाएंगे। पहले ये बता दो कि आपका वीकेंड कैसा रहा? अभी बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं तो आपका जो टाइम बच्चों के साथ समर में बीत रहा था, तो अब आपका जो समय है आप वो समय आप किस चीज में लगा रहे हो? तो मैं सोचती हूँ कि कई बारी पेरेंट्स को भी जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो फिर पेरेंट्स भी अगर चाहें तो वो अपने लिए कोई अच्छा सा कोई अपनी हॉबी को डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर उनके कोई कला छुपी है तो उनको उसको आप कल्टीवेट कर सकते हो, छोटे छोटे कोर्सेज ले सकते हो। जैसे कि अभी अडल्ट एजुकेशन में आप $55 दे करके कोई भी कोर्स लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कोई भी पढ़ाई करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसलिए आप किसी तरह की भी अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहो तो थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप जरूर आप कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है कि अपना जो टाइम है वो आप उसकी आपको वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप अपने टाइम की वैल्यू करते हो तो टाइम आपकी वैल्यू भी करता है, तो इसलिए आप अपने टाइम की थोड़ी सी वैल्यू कीजिए। बच्चे तो अब स्कूल चले गए तो आप भी थोड़ा सा अपने आप को फॉलो, बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आइए इसी विचार के साथ इस गीत को सुनते हैं।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब अगर आप अपने घर में बढ़िया फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी लेके आना चाहते हो और बढ़िया बढ़िया किचन की गैजेट चाहिए, लेटेस्ट टीवी का मॉडल चाहिए और आपको बैक यार्ड में अपने बढ़िया फर्नीचर और बढ़िया बारबेक्यू चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए। अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है तो आप वहाँ पे जाइए और अपना ये सारा जो सामान है उसके लिए आप ऑर्डर कीजिए 905-799-0045-799-0045 पे कॉल कर सकते हो। हम मिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो हाँ जी पहुंचो बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तो लैके $1,00,000 तक, ते फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तो साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। जे तुहानूं नवें टायर चायर दी लोड है तां ओह वी मिलणगे, चार टायर दा सैट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुणो AM530 लिसनर लई खास ऑफर, जदों तुसीं बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन आओ सानूं सिर्फ ए दसो मैं AM530 ते मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है अते तुहानूं मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सिद्धी बचत, तां फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बीवीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन, कॉल करो 365-384-3840।

0: 9 0 5 I mean 6 3 6 5 3 8 4 3 8 4 0 दोबारा सुनो 365 3 88 3 40 BBT Rockcliffe Auto Hamilton Local Service Great Location Selection Great Location Great Selection Great Deals BBT Rockcliffe Auto Hamilton। जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और आपको अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे जो फेस्टिवल शुरू होंगे। अभी पहले तो आपके लिए जो है कि श्राद्ध, जो जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और फिर उनके ये खास दिन उनके लिए डिवोटेड होते हैं, सभी लोग अपने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिस तरह की भी उनकी श्रद्धा हो, तो आप भी जरूर अपने पूर्वजों की के लिए करेंगे जो भी कुछ। पर अभी तो गणेश उत्सव है, तो राम मंदिर में स्पेशल प्रबंध किया गया है गणेश उत्सव का। बोट क्रूज होने वाला है 20 तारीख को, और 20 तारीख को ही उनके गणेश विसर्जन करने वाले हैं। बहुत सारे मंदिरों में बहुत बढ़िया बढ़िया इस वीकेंड प्रोग्राम किए जाएंगे, क्योंकि गणेश उत्सव 13 सितंबर से 19 सितंबर तक है। तो अब साथ में ही मेरे लिए, मैंने 20 तारीख को जाना था राम मंदिर वाले बोट क्रूज में, पर उस दिन ही टेरी फॉक्स रन है, तो मैं हर साल पिछले 20 साल से टेरी फॉक्स रन में जाती हूँ और 5 किलोमीटर वॉक करती हूँ। तो मैं यहाँ इस साल नियाग्रा फॉल में जाऊंगी।
1: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाए।
0: यहाँ तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। अगर आपने किसी किस्म का भी, अभी नवरात्रे भी आने वाले हैं, आपको किसी तरह का भी पूजा का सामान चाहिए होगा, तो आप इंडिया सजावट एंड पूजा हट आपके लिए मेलनी ड्राइव पे मौजूद है, आप वहाँ जाइए और आपको सब कुछ मिलेगा। साथ साथ में आपको बहुत बढ़िया, जो आप वहाँ जाते हो तो फीलिंग बहुत अच्छी आपकी हो जाती है।
2: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात सिदोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 Melanie Drive Unit 9 and 10 ब्रांटन, टेलीफोन 905-799-9400।
0: जी हाँ, तो अगर आपको मूव होना है तो HK मूवर कनाडा भर में मूव करने की आपकी पूरी मदद करते हैं, तो HK मूवर्स को आप आज ही अपना ट्रक बुक कीजिए मूविंग के लिए 416-524-4416-524-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको एक और बहुत ही प्यारा सा बुला मिश्रा गीत आपको सुनाते हैं, तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा। तो एक बार आपको ये भी याद करा दें कि रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे 10 से 11 बजे तक, तो बढ़िया बढ़िया आपको म्यूजिक सुनाएंगे और फिर और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो कि हर रोज की जिंदगी की हैं वो आपको। बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं, तो जहाँ भी बच्चों को बस उतार रही होती है तो आपको जरूर अपना कार को स्टॉप करना चाहिए।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ ਜੋ G26 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1165 ਤੇ 416-213-1165।
1: एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। जी हाँ, तो अगर आपको गणेश उत्सव के लिए कोई भी मिठाइयाँ चाहिए तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे आपको एकदम ताजा सामान मिलता है, क्योंकि उनकी जो टर्नओवर है बहुत ज्यादा है। यहाँ पे टर्नओवर बहुत सामान बिकता है, तो आपको हमेशा फ्रेश सामान मिलेगा। ये तो पक्की बात है, मानने वाली बात है। आप भी इसको जरूर जमाइएगा, आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइएगा। तो लेट्स हियर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो रात को 10 से 11 बजे आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। और अगर आपको खाना ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है किसी भी मौके के लिए, तो आप इंडिया, न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है। तो और जानकारी के लिए आप 905-814-1703 पर कॉल कर लीजिए, बुक कर लीजिए 9058141730। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, तो मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। रात के वो फिर हम इसी तरह आपका मनोरंजन बहुत बढ़िया तरीके से आपका मनोरंजन कर और बढ़िया बढ़िया गाने लेकर पेश हो जाएंगे, तो आपसे बातचीत भी होगी। तो आइए सुनिए ये प्यारा सा गीत और नानक नाम चढ़ती कला पानी स्वादा पर। हाँ, वंडरफुल वीकेंड।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

जिन तुम भेजे तिन है बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ, आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन, निःचल राज कमाओ। जिन तुम भेजे तिन है बुलाओ,

आज खूबसूरत सवेर का खूबसूरत लोग खूबसूरत मुल्क सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी राही टोरंटो पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यू जर्सी तक जिसे सुन रहे हो उत्थे सानू तुसी ओंटारियो बॉर्डर टू बॉर्डर रेंज दे विच सुन रहे हो। आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार चढ़दी कला वाला निरभउ निरवैर रहेगा। मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे। एक बार फिर तो पियर्सन एयरपोर्ट का ट्रैक छे जिथे अमेरिकन एयरलाइनस जी लैंड कर चुकी है तो 401 ईस्ट एंड वैसट बाउंड मूविंग बिजी एंड डेरी रोड जो कि आम तौर पर बिजी रहती है। तो इस समय तुसी ट्रैवल कर रहे हो किसी भी शहर तो किसी भी शहर तक। आप सब नो शुभ इच्छावां दे दिंदी हैं ग्रे स्काइज दे नाल, सनी मिक्स क्लाउडी पीरियड दे नाल, प्लस डबल डिजिट दे विच टैंपरेचर जिथे अज दे दिन नू खूबसूरत होर बनाऊगा। अज ते कल तुसी खूब इंजॉय करोगे और उस तो बाद आई थिंक सो कि काम नू भी इंजॉय करोगे, पर बहुत सारे लोग काम नू गुलामी वांगू लैंदे ने। फिलहाल काम दे नाल बंदे दा मुल हुंदा ते बंदे दा मुल चम नाल नहीं काम नाल, मैं हमेशा कहना हाँ। तो तुम चलो एक बार फिर सर नाल स्टूडियो नंबर 905-673-3334 जिते चलेगा चलूंगी नाल तेरे टिकटा दो ले लेंगे। टिकट टू कॉल स्टूडियो 905-673-3334।

0: जल्दी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: हेलो ब्रो, किथे है तू?
2: मैं क्लाइंट नु मिलन जा रहा, सोच रहा सी टिम हॉर्टन्स च बैठ जाइए।
1: ओ यार, ये तो ओल्ड स्कूल हो गया, हुन ता क्लाइंट मीटिंग्स क्लासी होनिया चाहिदिया ने। नजारा रेस्टोरेंट लेके जाओ उन्हां नु, प्राइवेट बूथ्स ने, फुल प्राइवेसी मिलदी है, फ्री वाईफाई ते लग्जरी एंबियंस, बिजनेस मीटिंग भी सेट हो जांदी है ते खाना भी बहुत वधिया।
2: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
1: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी। हुणे कॉल करो 9054512600, 9054512600।

0: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
1: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
1: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 गोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 2828

0: 1630.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: वेलकम टू रेडियो गोल्ड. आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड, जहां सिर्फ आपके लिए है सब कुछ, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक नया और रोमांचक अनुभव, जहां होगा म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, न्यूज, टॉक शो और आपका और हमारा साथ. तो सुनते रहे रेडियो गोल्ड, क्योंकि ये है आपके साथ हमेशा. सुनहरे लम्हे और चमकती दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर लम्हा है सोने की तरह की गोल्डन मोमेंट्स की मिठास रेडियो गोल्ड के साथ. Views, ideas and opinions expressed in the program are strictly that of the participants and they do not in any ways reflect the views, ideas and opinions of Radio Gold. गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका प्रोग्राम लेके. हम आपके लिए हाजिर हो गए हैं. हर सैटरडे को ये प्रोग्राम आपकी नजर होता है. 12 सितंबर है आज का दिन, सैटरडे का खूबसूरत सा दिन. क्या खूबसूरत मौसम है, 22 डिग्री टेम्परेचर. इतना हसीन, इतना खूबसूरत मौसम हो तो फिर कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए. हर वेले, हर वक्त शुक्राना शुक्राना और शुक्राना करते रहना चाहिए. आपका हमारा साथ साथ साथ रहेगा. पंजाबी हिंदी का मिक्स, पंजाबी हिंदी उर्दू का ये मिक्स प्रोग्राम होगा. और आपने कोई भी बातचीत करनी है तो हमारे नंबर है 416-233-7368. स्टूडियोज के नंबर है एंड माई नंबर इज 416-910-6000. इस प्रोग्राम में म्यूजिक होगा, गीत संगीत होगा और बहुत सारी नॉलेज आपके लिए लेकर हम हाजिर हुए हैं. रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन होगी, मॉर्गेज की इन्फॉर्मेशन होगी, एस्ट्रोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होगी कि सितारे आपके क्या कहते हैं. तो हमारे साथ रहें 5 बजे से लेकर 6 बजे तक. आपका और हमारा साथ साथ साथ. कोई भी गीत संगीत सुनना चाहते हैं, फरमाइश करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल अस इन स्टूडियो और ऑन माई सेल नंबर. और नासिर जी मेरे साथ हैं आज स्टूडियोज में, इनसे बातचीत करेंगे मॉर्गेज के रिगार्डिंग, कुछ इनसे टिप्स भी लेंगे. और बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं हमारी कम्युनिटी के नासिर शाह. नासिर जी आपका तोड़ा स्वागत है निगा.
2: बहुत शुक्रिया सोनम जी. रेडियो प्रोग्राम सुनो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. जय तुसी क्या जी. रेडियो गोल्ड, रेडियो गोल्ड वाकई गोल्ड है क्योंकि लोगों ने दिलों च वसिया है. पहले तुसी डिफरेंट चैनल हो, तुसी 530 AM ते काम कर रहे हो और बड़ा अच्छा लग्या तुहाडा जिहड़ा तरीका, तुहाडा 15-16 साल का एक्सपीरियंस है वो तुसी एज ए होस्ट काम किया, वो जिहड़ी चीज हैगी वो सानू लोगों नू बहुत चंगी नजर असी वेखने और बहुत तुहानू असी रिस्पैक्ट करने ओनली बिकॉज तुहाडा जिहड़ा टैलेंट है और तुहाडी जिहड़ी क्वालिटीज न वो सानू बहुत चंगे लगदे हन. ते सोनम जी अज असी बहुत सारिया गल्लां तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारिया चीजा ते असी अंडरस्टैंड ते करने आ लेकिन दिल नहीं मनदा. समझ आंदी है, दिल नहीं मनदा ते उन्दे वास्ते बहुत जरूरी है तुसी अपने आप नू पहले मेक श्योर करो कि तुहानू अपनी समझ आ गई है. अगर तुहानू अपनी समझ आ गई ते फिर तुहानू सारिया गल्लां समझ आ जावांगियां. जदों तक तुहानू अपनी समझ नहीं आएगी तुहानू किसी दी समझ नहीं आएगी.
1: नासिर जी ए इक बड़ा वास्ट टॉपिक है, एदे उपर असी गल्लबात वी करांगे. इक तां अपने नाल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और असी दुनियादारी च इन्ने उलझे होया कि असी सारी दुनिया नू खुश करन च लगे रहने आ बट असी अपने आप नू भूल जाने आ, है ना. और सानू पता ही नहीं है कि असी खुद नाल कनेक्ट होना, अपनी सोल नाल किस तरह कनेक्ट होना. इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसीजर एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. अज साडे नाल गलबात इस टॉपिक दे उपर करांगे और शुकराना बड़ा जरूरी है जिंदगी दे विच.
2: हां जी, है ना. देखो गुरु नानक साहब ने 20 रुपया नाल अपना लंगर चलाया सी.
1: बिल्कुल,
2: हुण पूरे वर्ल्ड च लंगर चलदा पिया. साडा भी यही बिलीव है, असी बहुत सारे लोग ऐसे बिलीव नाल काम कर रहे हैं. तुसी अगर हो सके तो दवो, देन नाल तुहानू सुकून मिलेगा और उन्दे नाल तो जिहड़ा ओह सुकून होएगा ना ओह तुहानू अंदाजा ही नहीं हैगा. और मेरा बिलीव 100% हैगा जे तुसी एक वारी करके वेखो, अगर तुहानू नहीं यकीन आंदा, एक रुपया या एक डालर किसे नू दे के वेखो रब दे नाँ दा, मैं कहना हुन्ना 70 गुना वापस आंदा या नहीं आंदा.
1: 100%
2: और 70 गुना अगर लैना जे ते 1 रुपया दे के वेखो और वेखो तुहाडे आने वाले तुहाडी लाइफ चेंजेस किन्नी आंदियां
1: ने.
2: और बहुत सारी चेंजेस आवणगियां, ऐ नहीं खाली तुसी गल्लां ते कर लैंदे हो. बहुत सारी जगह ते तुसी कहंदे हो यार पता नहीं की होना ते की नहीं होना. एक्चुअली तुसी अगर चाहुंदे हो अपनी लाइफ नू चेंज करना, लाइफ नू बैटर करना, ते रब ते देना शुरू कर दे, रब दे नाम दा देना शुरू कर दे और शुकराना शुरू कर दे. जदों तुसी शुकराना और रब दे नाम दा देना शुरू कर दोगे तो ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਿਨਾਂ ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ
3: ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ, ਅੱਜ ਕਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਫੋਰ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਚੁਲੀ ਇਟਸ ਇਨ ਬਿਲਟ ਇਨ ਅਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਟ 2 ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਵਿਦ ਯੂ, ਬਟ ਯੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੈਟ ਟੂ, ਦੀਸ 2 ਥਿੰਗਸ, ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫੋਕਸ ਔਨ 8 ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਐਂਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਐਂਡ ਓਵਰਕਮ which you don't have and the blessings yet to come. Sabar rakhein aur shukrana karte rahein, zindagi bahut khoobsurat hai aur isko jeene ki koshish hamesha karte rahein. Aur hai na, aur hum aaj ka jo program ka ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੌਂਗ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇ। 416-233-7368 ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੌਂਗ, ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ, ਰੇਡੀਓ ਗੋਲਡ 5 to 6 AM 5:30।
1: The views, ideas and opinions expressed in the program are strictly that of the participants and they do not in any

0: प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड शाइन विद सोनम. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.
1: ओपन माइक कैफे एंड कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा. खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें. तीखे और तेज मसाले हर फीके पन को मिटा दें. लाहौरी गोट एंड चिकन कड़ाही, शिनवारी चिकन एंड गोट कड़ाही, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर. 416-526-6800 416-526-6800.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रिट्स फर्नीचर दा ए मैसेज।

0: क्योंकि 99.9% वर्क नहीं करता है ना।
1: साड़े ना फादर एक शेर पढ़ते थे, माली दा काम में पानी देना अरपट मशकां लावे, रब दा काम में फलफुल लाना लावे ही लावे,
0: लावे ही लावे।
1: एक्चुअली शायर जिन्हें लिखा है शेर, उन्हें लिखा है माली दा काम में पानी देना अरपट मशकां लावे, रब दा काम में फलफुल लाना लावे या ना लावे,
0: लावे या ना लावे।
1: फादर ने टोटली बदलता,
0: लावे ही लावे
1: ही लावे।
0: क्या बात है,
1: एस बिलीव ते काम करना शुरू करो। जो ए बिलीव थोड़ा आ गया तुसी समझो कामयाबी कामयाब। फल लगना है, देर हो सकती है, देर नहीं हो सकता,
0: देर नहीं हो
1: सकता। जो थोड़ा बिलीव स्ट्रांग हो गया तुसी अगे वधोगे वधोगे। साडा ते यही बिलीव है और रब दी जिन्नी मेहरबानियां ऐसे बिलीव दे नाल मेहरबानियां, और रब ने हमेशा साडे ते कर्म कीता ऐसे वजह तो असी बिलीव अपना स्ट्रांग रखिया। ते मैं ऑलवेज यही कहना अपना बिलीव स्ट्रांग रख के चलो और अगे तुहानू कोई नहीं रोक सकदा वधन तो। बहुत सारे लोग बैठे हुंदे ने ओ यार सानू कंपनी मिलदा पिया, यार सानू ए प्रॉपर्टी नहीं मिलदी पई, ए चीजां सोचनियां बंद कर दो। कुछ मिलनगी अगर तुसी कोशिश करोगे, कोशिश करो,
0: कोशिश
1: देखो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, कोशिश करो, रब दा शुकराना करो और रब दे नाम ते कुछ ना कुछ, भावे रुपया दवो भावे 100 रुपया दवो, कुछ ना कुछ दवो, रब दी मेहरबानियां।
0: मैं लगता बहुत सारे लोग होंगे जेड़े इस दौर चो गुजरे होंगे या जिन्हां ते कुछ एक्सपीरियंसिस होंगे जरूर कि नेगेटिविटी तो पॉजिटिविटी दी तरफ जड़े चेंज हुए ने, या फिर शुकराना। शुकराने के उपर अजकल ते सोशल मीडिया भरिया होया है, ग्रैटीट्यूड करन दे नाल तुहाडी बॉडी दा इक सैल जड़ा है ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇਮਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਸ ਆਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਬ੍ਰੇਨ।
1: ਰਾਈਟ,
0: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਗੈਟ ਔਰ ਯੂ ਡੂ। ਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। 416-233-7368।
1: ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਫੂਡ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੜਾਈ, ਲਾਹੌਰੀ ਕੜਾਈ ਖਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਕੜਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ ਓਪਨ ਮਾਈ ਕੈਫੇ ਐਂਡ ਕੁਜ਼ੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਸੀ ਐਂਡ ਡੰਡਾਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, 1310 ਡੰਡਾਸ ਸਟਰੀਟ, ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਏਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣਾ।
0: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ,
1: ਪੈਸੇ ਆ ਪੈਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
0: ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
1: ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, MCC.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਕੈਸੇ ਲੋਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਬਾਬ ਖਾਦੇ ਨੇ ਚਿਕਨ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ, ਲੋ ਜੀ ਐਸੋ ਵਧੀਆ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਐਸੋ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਐਸੋ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰੀ ਚਰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਹੌਰੀ ਚਿਕਨ ਚਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ, ਔਰ ਫਿਸ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਰੋ ਫਿਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵਨ ਦਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਸ ਮਿਲਣਗੇ ਵੈਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੈਜੀ ਪਲਾਓ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ ਓਪਨ ਮਾਈ ਕੈਫੇ ਐਂਡ ਕੁਜ਼ੀਨ, ਡਿਕਸੀ ਐਂਡ ਡੰਡਾਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ, 416-526-6800 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 416-526-6800 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੋ ਦਿਨ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸੋਨਮ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਚਰਡੇ ਐਂਡ ਸੰਡੇ, ਉਹ ਸੁਬਹਾ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੰਚ ਹੁੰਦਾ, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬ੍ਰੰਚ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 14 ਆਈਟਮਾਂ ਸਿਰਫ $19.99 ਵਿੱਚ 14 ਆਈਟਮਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਮਟਨ ਪਾਈ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰੀ ਚਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 14 ਆਈਟਮਾਂ ਸਿਰਫ $20 ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? $20 ਵਿੱਚ 14 ਆਈਟਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਓਪਨ ਮਾਈ ਕੈਫੇ ਐਂਡ ਕੁਜ਼ੀਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-526-6800, ਔਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ।
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਚਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੀਸ਼ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
1: ਜੀ,
0: ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੀਸ਼ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Let's go for real estate market update.
2: मार्केट अपडेट में सोनम की तरफ से स्वागत है आपका। जीटीए में अगस्त ने बायर्स को थोड़ा फायदा दिया, लेकिन सेलर्स के लिए वार्निंग बेल। टोरंटो मार्केट में अगस्त में सेल्स कमजोर हुई और इन्वेंट्री काफी बढ़ी, इसमें प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आया और 2026 में अब तक की सबसे बड़ी प्राइस डिक्लाइन देखने को मिली है। हिडन फैक्ट है कि जब इन्वेंट्री बढ़ती है और सेल्स उसी स्पीड से नहीं बढ़ती तो सिर्फ प्राइस कम होना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। बायर्स की नेगोशिएटिंग पावर बढ़ती है, मतलब आज का बायर सिर्फ कितने में मिलेगा नहीं पूछ रहा बल्कि सेलर्स कितनी नेगोशिएशन करेगा वो भी पूछ सकता है। ओंटारियो में हाउसिंग एक्टिविटी का डॉलर वॉल्यूम भी नीचे रहा। क्रिया डेटा के अनुसार अगस्त 2026 में ओंटारियो में होम सेल्स का कुल डॉलर वॉल्यूम लगभग 10.7 बिलियन रहा जो अगस्त 2025 में 7.7% कम है। ये सिर्फ प्राइसेस गिरे हैं की कहानी नहीं है, इसका मतलब कम ट्रांजैक्शंस प्लस सॉफ्टर प्राइसिंग इज इक्वल टू मार्केट में पैसा कम घूम रहा है। बैंक ऑफ कनाडा ने सितंबर में रेट को 2.25% पर बनाए रखा लेकिन इन्फ्लेशन रिस्क को लेकर ज्यादा कॉन्शियस टोन सामने आई है। लोग अक्सर कहते हैं कि रेट नहीं बढ़े मतलब मॉर्गेज सस्ता हो जाएगा, लेकिन मॉर्गेज रेट सिर्फ बैंक ऑफ कनाडा की ओवरनाइट रेट से तय नहीं होते। बॉन्ड यील्ड्स और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस भी मॉर्गेज प्राइसेस पर असर डालते हैं। अगस्त में 5057 होम सोल्ड हुए जो पिछले साल के मुकाबले 2.1% कम है। इंटरेस्टिंग नंबर है न्यू लिस्टिंग्स 12,075 जो एक साल पहले के मुकाबले 14.1% कम है और एवरेज सेलिंग प्राइस रही लगभग 993,410। अक्सर सुनते हैं कि सेल्स कम है मतलब मार्केट खराब है लेकिन जरूरी नहीं। अगर बायर्स कम है और सेलर्स भी मार्केट में कम आए हैं तो कंपटीशन कुछ नेबरहुड्स में फिर से बढ़ सकता है। ट्रेब ने भी कहा है कि कम इन्वेंट्री और कुछ एरियाज में कम चॉइसेस आगे चलकर प्राइस ग्रोथ का कारण बन सकती है, मतलब मार्केट को सिर्फ बायर्स मार्केट या सेलर्स मार्केट कहना अब थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। मान लीजिए आप लगभग 1 मिलियन का घर खरीदते हैं और 20% डाउन पेमेंट देते हैं मतलब करीब 8 लाख का। अगर इलस्ट्रेटिव मॉर्गेज रेट 4.5% है और अमोर्टाइजेशन 25 इयर्स की है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की मंथली पेमेंट लगभग 44-47 बनती है। इसमें अब प्रॉपर्टी टैक्सेस, होम इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और यूटिलिटीज ऐड कीजिए तो 1 मिलियन का घर सिर्फ 44-47 पर मंथ नहीं है। ये है मेरा रियलिटी चेक। घर की कीमत देखकर अफोर्डेबिलिटी जज मत कीजिए, टोटल मंथली कैरिंग कॉस्ट देखकर कीजिए और यही कैलकुलेशन इन्वेस्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सेलर्स के लिए हिडन लेसन है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी मार्केट में 30 से 60 दिन बैठी है तो सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजन मत लीजिए। अपने रियल्टर से पूछिए मेरी प्रॉपर्टी को कितने क्वालिफाइड बायर्स ने देखा या सिंपली सिमिलर प्रॉपर्टीज कितने में बिक रही हैं, मेरा कंपटीशन कितना है, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम प्राइस नहीं होती, प्रेजेंटेशन, कंडीशंस, टाइमिंग या मार्केटिंग भी हो सकती है। और बायर्स के लिए लोअर प्राइस हमेशा बेटर डील नहीं होता। अगर आपको 50,000 सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है लेकिन उसमें 80,000 की रिपेयर है तो डिस्काउंट कहाँ गया। इसलिए ऑफर प्राइस से पहले टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप देखिए। जीटीए में मार्केट में अभी नंबर्स हमें एक मिक्स पिक्चर दे रहे हैं। प्राइसेस पिछले साल से नीचे हैं लेकिन इन्वेंट्री भी कम हो रही है। अगस्त में बेंचमार्क प्राइस 4.5% नीचे था जबकि लिस्टिंग्स 14.1% नीचे थी। इसलिए आने वाले महीनों में मार्केट को सिर्फ प्राइसेस गिराएंगी या प्राइसेस बढ़ाएंगी के चश्मे से देखा जाए तो ये सही नहीं होगा। सप्लाई कहाँ जा रही है, डिमांड कहाँ लौट रही है और सबसे जरूरी बायर्स की परचेजिंग पावर कहाँ खड़ी है, मार्केट को सिर्फ देखे मत समझिए भी। मिलते हैं अगले रियल एस्टेट वीकली अपडेट में। शुक्रिया।
3: प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड शाइन विद सोनम। कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।

0: सोनम।
1: हाय अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन, 9054573232, Clear Optical by Varun Kanda।
4: लीडी गोल्ड में आपका स्वागत है और चले आपको लेकर चलते हैं क्लियर ऑप्टिकल, और वरुण जी हमारे साथ हैं। वरुण जी वेलकम, कैसे हैं आप?
5: बहुत बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच सोनम जी, आपका बहुत धन्यवाद मुझे प्रोग्राम पे लेने का।
4: यू वेलकम जी। और चलिए, क्लियर ऑप्टिकल के बारे में बहुत बार हम सुनते रहते हैं, लेकिन जो हमारे नए लिसनर्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें, क्लियर ऑप्टिकल क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड व्हाट इज द लोकेशन?
5: हाँ जी सोनम जी, क्लियर ऑप्टिकल है ये ब्रैम्पटन में स्टील्स एंड फाइनेंशियल के एरिया में। हमारी एक दूसरी लोकेशन भी है जॉर्जटाउन में, एंड हमारा जो मेन बिजनेस है आपको दुनिया के तमाम अच्छे से अच्छे फ्रेम्स देना आई ग्लासेस के, सो ब्रांड नेम फ्रेम्स, आई एग्जामिनेशन भी करते हैं हम, एंड आपकी कोई ग्लासेस की रिपेयर करनी है या आपने अपने फ्रेम में ही लेंसेज डलवाने हैं, हमारे पास पूरा ए टू जेड सिस्टम है।
4: क्लियर ऑप्टिकल फाइनेंशियल एंड स्टील्स के कॉर्नर पे बहुत ही खूबसूरत स्टोर है, आप भी वहां पे जाकर जरूर आएं और एक चक्कर जरूर लगाएं एंड यू विल सी द डिफरेंस विद क्लियर ऑप्टिकल। वरुण जी जाने से पहले अपना नंबर दे दें एक बार फिर से।
5: सोनम जी हमारा नंबर है 9054573232, एंड सोनम जी एक बहुत ही जरूरी बात है मैंने आप हमारे लिसनर्स को बतानी है कि हमारे पास स्मार्ट क्लासेस की पूरी रेंज है, जो स्मार्ट क्लासेस जिनमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, कैमराज है, माइक्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन AI, आजकल AI के जमाने में आप अपने ग्लासेस में भी इस चीज को एंजॉय कर सकते हो।
4: वंडरफुल, क्लियर ऑप्टिकल स्टील्स एंड फाइनेंशियल, थैंक यू वरुण जी, शुक्रिया।

0: स्ट्रगल लाइफ इज अ चैलेंज, कल यहाँ पे क्या हो किसी को कुछ नहीं पता, सो आज दे विच जिंदगी जीना ही जिंदगी है, जो थोड़ी जिंदगी आज हो रहा है दैट इज लाइफ, कल की होना है किसी ने कुछ नहीं पता। चलो थोड़ी जी थोड़ा सा हम चांद सितारों की तरफ चलते हैं, एस्ट्रोलॉजी की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और कुछ लोग इसे सुपरस्टिशन कहते हैं और कुछ लोग इसमें बिलीव करते हैं।
1: चांदनी बियॉन्ड स्टार्स, यहाँ हम करेंगे सितारों की भाषा को समझने की कोशिश, क्योंकि आसमान में चमकते सितारे सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों के संकेत, ज्योतिष साइंस के गहरे रहस्य और उनके हमारे जीवन, करियर, सोच, रिश्तों, फैसलों और भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव। तो आइए ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलते हैं, क्योंकि कभी कभी जवाब जमीन पर नहीं सितारों में छुपे होते हैं और हर सितारा एक कहानी कहता है और शायद उनमें से एक कहानी आपकी भी हो। तो चलिए सितारों से जुड़िए और खुद को समझिए।
0: बिल्कुल जी, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी को मैं हमेशा जीपीएस कहती हूँ, क्योंकि जैसे गाड़ी हम चला रहे हैं ना, तो आगे हमें जीपीएस बता देता है कि आगे सड़क रोड खराब है या

0: में लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सुपरस्टिशन है. दोनों में डिफरेंस क्या है? हर वो चीज जिसे हम समझ नहीं पाते, क्या उसे हम अंधविश्वास कह दें ये सही है? एस्ट्रोलॉजी और सुपरस्टिशन में आखिर फर्क क्या है? अंधविश्वास क्या कहता है? बस मान लो. जबकि ज्योतिष कहती है कि इसको समझो, ऑब्जर्व करो और फिर अपना निर्णय दो. ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति, राशियां, नक्षत्र, दशा, गोचर जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम देखकर जानते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब तक होगा. लेकिन अगर कोई कहे कि ये मत करो वरना बुरा होगा, या ये चीज मत करो वरना 100% बुरा होगा, ये उपाय कर लो तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, तो वहां आपको रुकना चाहिए. एस्ट्रोलॉजी का मतलब है जीवन के पैटर्न को समझना, स्ट्रेंथ और चैलेंजेस को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेने की कोशिश करना. कोई कहे कि उपाय कर लो तो रातों रात बदल जाएगी किस्मत आपकी, तो वो एस्ट्रोलॉजी नहीं अंधविश्वास होगा. क्योंकि सच्चा ज्ञान आपको जागृत करता है. आईना आपका चेहरा दिखाता है लेकिन चेहरा बदलने का फैसला आपका होता है. इसलिए ग्रह संकेत दे सकते हैं लेकिन आपकी सोच, आपके कर्म, आपके फैसले आपकी कहानी लिखते हैं. एस्ट्रोलॉजी और सुपरस्टिशन में एक डराता है और दूसरा समझाने की कोशिश करता है. इसलिए एस्ट्रोलॉजी को से डरना नहीं, उसको समझना चाहिए. क्रिटिक्स भी अक्सर यही कहते हैं कि अगर सच में एस्ट्रोलॉजी है तो क्या फ्यूचर 100% एक्यूरेट बताती है? सवाल सही है लेकिन शायद प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजी में नहीं, हमारे एस्ट्रोलॉजी को समझने में है. सोचिए अगर मौसम का फोरकास्ट होता है कि बारिश की संभावना 80% है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर के बाहर एग्जैक्टली 7:15 बजे बारिश हो जाएगी. फोरकास्ट कंडीशंस और प्रोबेबिलिटी बताते हैं, वो चेंज भी हो सकता है. एस्ट्रोलॉजी भी इसी तरह काम करती है लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर रीडिंग सिर्फ आपकी राशि को देखकर ही नहीं, आपका लगन, प्लैनेट, नक्षत्र, ट्रांजिट, बहुत सारी चीजों को देखना होता है. एक ही प्लैनेट हर इंसान के लिए एक जैसा रिजल्ट नहीं देता. हमने शनि का नाम बहुत सुना है कि शनि से लोग बहुत डरते हैं, लेकिन शनि सिर्फ डराता नहीं, पनिशमेंट का प्लैनेट नहीं है. ये आपको डिसिप्लिन भी करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, स्टेबिलिटी भी देता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस भी दे सकता है. अधूरी एस्ट्रोलॉजी को क्रिटिसाइज करना आसान है लेकिन पूरी एस्ट्रोलॉजी को समझना असली चैलेंज है. थिंक, क्वेश्चन, लर्न एंड देन डिसाइड एस्ट्रोलॉजी. इसके बारे में हम आगे चल के बातचीत करते रहेंगे. एस्ट्रोलॉजी की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में आपको बताएंगे, फिर पामिस्ट्री के बारे में, आपके हाथ क्या कहते हैं, आपकी फिंगर्स क्या कहते हैं, आपके नेल्स क्या कहते हैं, हाथों की रेखाएं, हाथों का रंग क्या कहता है, बहुत सारी वास्ट स्टडी है. तो हमारे साथ रहें 5 से 6 एवरी सैटरडे 5:30 AM ऑनवर्ड्स. जी नासिर जी.
1: जी सोनम जी, और जिवें तुहानू पता है असी अगे दस रहे सां, अगर तुसी वाकई चाहते हो चंगा फूड खाना, लाहौरी कढ़ाई, लाहौरी फिश, लाहौरी चरगा ते या हलवा पूड़ी, किसी तरह का वैजी नॉन वैजी किसी तरह का तुसी खाना खाना चाहते हो, तुहानू ओपन माई कैफे एंड कुजीन पाकिस्तानी 100% तुहानू टेस्ट मिलेगा. बहुत सारे लोग उत्थे पाकिस्तानी कुक काम करते हैं. कोई भी जानकारी लैनी हो तुसी कॉल करो 416-526-6800 ते कॉल करके तुसी बुकिंग करा सकते हो. ब्रेकफास्ट करना है वीकेंड ते, तुसी सैटरडे एंड संडे सुबह 10 to 3 PM तक तुहानू मिलेगा ब्रेकफास्ट एंड ब्रंच, ते तुसी उत्थे जा सकते हो. 14 आइटम सिर्फ और सिर्फ 1999 दियां, $20 च 14 आइटम तुहानू मिलेंगे. ऐसो वधिया गल की हो सकती है, तुसी खा के थक जाओगे लेकिन वो फूड खत्म नहीं होएगा, इन्ना वधिया वो कहंदे ने. और नाल नाल ये कहंदे ने भी तुहानू मजा नहीं आएगा तो पैसा एक ही नहीं लवोगे. एक बार लाजमी जाओ, ट्राई करो, अपनी मर्जी का कढ़ाई गोश्त बनाओ, गोट कढ़ाई बनाओ, सी कबाब, बारबीक्यू, थाई लैग, किसी तरह के तिकन चिके जो होता ना चिकन टिक्का, वो तुसी खाना है, उन्दे वास्ते भी तुसी इत्थे पहुंच सकते हो ओपन माई कैफे एंड कुजीन. एक और गल दस देने कहने, तुसी अगर चाहते हो उत्थे पार्टी करना 150 बंदे तक उन्हें कोल हॉल है, उन्दे च म्यूजिक तुहानू साउंड बिल्कुल फ्री मिल रहा है, सिंगर भी उत्थे हुंदा है, सिंगर भी तुहानू लाइव तुहानू सुनने च मिलेगा. तुसी उत्थे पार्टी भी कर सकते हो 150 बंदे तक, तुहानू साउंड भी अजकल किसी जगह ते तुसी गैदरिंग करदे हो $500-600 मिनिमम साउंड दा लैंदे ने, वो तुहानू फ्री मिलेगा. और 20 आइटमां सिर्फ 24.99 तुसी 150 बंदे तक बुकिंग कर सकते हो. उत्थे कोई जानकारी लेनी है कॉल करो 416-526-6800. और उन्दे नाल नाल मैं मोड़गी दी जिवें गल कर रहे सां, मोड़गी अगर तुसी किसे तरह दी लैनी है सोनम जी, मोड़गी असी तुहानू कहने ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जदों तुसी लगे रहिंदे हो किसे काम, सानू तकरीबन 27 साल हो गए ने इस काम विच, और कमर्शियल मोड़गी तुसी

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Culture of Punjab, serving the South Asian community in and around the GTA. For exciting packages, promotional offers, and inquiries, please call 416-677-0609. That's 416-677-0609. Culture of Punjab.
2: हर एक जज्बात को दुआ नहीं मिलती, हर एक आरजू को जुबा नहीं मिलती। मुस्कान सजाए रखो तो दुनिया है साथ, क्योंकि आजकल हालात ये हैं कि आंसू तक को आंखों में पनाह नहीं मिलती। नमस्कार, आदाब सामीन। बहुत से जज्बातों, एहसासों को शब्दों में छिपा आपके रूबरू हूँ मैं प्रीत, आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस शो को सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे।

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: साड़ी वक्री पहचान,
2: साड़ा वक्रा है नाम, साड़ी कर नहीं सकता कोई रीज।
1: कल्चर ऑफ पंजाब
2: बेहतरीन पंजाबी

ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ। कल्चर ऑफ पंजाब आपको एंटरटेन भी करता है और आपको बिजनेस भी देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करे तो इस एंटरटेनमेंट सेगमेंट का हिस्सा बन जाइए। देव तातला को 416-677-0609 that's 416-677-0609 पर कॉल करें और स्पेशल प्रमोशंस का फायदा उठाइए। भाई हम तो यही चाहेंगे कि हमारे आने वाले शोज में आपका बिजनेस भी शामिल हो। कल्चर ऑफ पंजाब बाय देव तातला।

आपसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं। गर वफाओं में सदाकत भी हो और शिद्दत भी, फिर तो एहसास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। उसकी आंखों के नशे में हम जब से डूबे, लड़खड़ाते हैं कदम और संभल जाते हैं। बेवफाई का मुझे जब भी ख्याल आता है, अश्क रुखसार पे आंखों से फिसल जाते हैं। प्यार में एक ही मौसम है बहारों का, पर कभी कभार यूं ही ख्याल आता है कि लोग मौसम की तरह कैसे बदल जाते हैं।

सुन रहे हैं कल्चर ऑफ पंजाब। एक्साइटिंग एडवर्टाइजिंग पैकेजेस के लिए कॉल कर सकते हैं 416-677-0609, 416-677-0609।

बार सदियां बीत जाती हैं उनको मिले उनको देखे हुए और मन यूं ही उदास खुद से पूछता है सोचता है कि मैंने देखा था उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था, उसकी पलकों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था, उसकी जुल्फों से भीगती थी घटा, उसका रुख महताब जैसा था, लोग पढ़ते थे रुक रुक कर उसे, वो अदब की किताब जैसा था, सारी आंखें थी आईने उसके, वो हकीकत था या किताब जैसा था। ये मगर देर की कहानी है, ये मगर देर का फसाना है, अब तो उसके और मेरे मिलाप के बीच सदियों भरा जमाना है। दिल बार बार खुद से पूछता है कि ना जाने इन दिनों वो कैसा होगा, क्योंकि मैंने देखा था सदियों पहले।

जिन राहों से आप अक्सर गुजरते हैं वो रास्ते भी आपके इतने आदि हो जाते हैं कि अगर आप कुछ दिन वहाँ नहीं जाते तो वो भी उदास हो जाते हैं। फिर हैरान परेशान हुए पूछते हैं औरों से कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। समंदर पूछता है कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। वही दोनों जो भीगी रेत पर एक दूसरे का हाथ थामे दूर तक, कभी हंसते, कभी कुछ गुनगुनाते या कभी चुपचाप बैठे दूर उफाक की गूंज में रोपोश होने वाले सूरज को देखते, आंसू बहाते और लौट जाते। समंदर पूछता है कि वो दोनों क्यों नहीं आते, पर समंदर बेखबर अनजान है एक सच्चाई से, और वो क्या है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस ट्रैक के बाद। बट यू लिसन इन योर वेरी ओन शो कल्चर ऑफ पंजाब ब्रॉट टू यू बाय देवदातला।

0: इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मेरे नाम जी, मेरा बिजनेस नहीं है चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
2: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? देवता अतले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: You are listening to Culture of Punjab. For exciting advertising packages, call 416-677-0609. 416-677-0609.

0: 92 55 80 93।
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
0: काउंटिंग नहीं, ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्हा कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते।
0: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905 450 2828 905 450 2828।

लेसी के साथ मुझे यानी प्रीत को आज का शो कल्चर ऑफ पंजाब यही खत्म करने की इजाजत दें। बट फॉर एनी बिजनेस क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट देव तातला एट द नंबर 416-677-0609. With that, I sign off. She'll see you again very soon. Till then, goodbye, take care and keep smiling.